सुनो सुनो, अरे सुनो सुनो, ए भाई और बहनो, अरे मगन भाई छगन भाई सांबड़ो रे सांबड़ो, ओ राघो बा ओ धोंडी बा, आई का ओ आई का, ओए कर्नल सिंह, ओए कर्नल सिंह, अरे तुझी भी सुनो पापे।

0: कुड़ी फंस गई।
1: अरे ये क्या कह रहे हो, मैंने ऐसा तो नहीं कहा था।
2: अरे रास्ता रास्ता देखो आप, मेरी लड़ी है।

0: ये प्यार का कमाल है शराब का सुरूर नहीं, होना था सो हो गया किसी का भी कसूर नहीं, सांसों में मेरे रस गई।
1: एक कुड़ी फंस गई।
2: उफ, ये क्या कह रहे हो, मैंने ऐसा तो नहीं कहा था।
1: अरे रास्ता।

इनमें किसके वास्ते हूँ मैं, न जाने इनमें कौन है मेरे लिए। जवानियाँ ये मस्त मस्त बिन पिए, जलाती चल रही है राह में दिए। न जाने इनमें किसके वास्ते हूँ मैं।